0: हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। थोड़ा अपना बॉबी हाजिर हाँ थोड़े फेवरेट शो बॉबी पंजाबी टॉक शो के इस लाइव सैशन में। तो आप जुड़ चुके हैं अपने बहुत ही सत्कारयोग अंकल हरवंत सिंह चौहान जी ना, तो आप उन्होंने गलबात करते हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल अंकल जी।
1: सत श्री अकाल जी।
0: अंकल जी सेहत ठीक है जी?
1: ठीक ठाक है, थोड़ा टायर्ड है, कोई रिहर्सल नहीं की, बिना रिहर्सल दे आया।
0: हाँ जी।
1: रिस्पेक्टेड रेजिडेंस ऑफ ग्रिफिथ, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सिख नौजवान सभा के मैंबर्स, सभना नू 2MOI की टीम वालों प्यार भरी सत श्री अकाल प्रणाम नमस्ते। अज 10 दिसंबर दिन वीरवार रात्रि दास हरवंत सिंह चौहान 95.1 FM ते लोकल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ते आप दे रूबरू होया है। दास पंजाबी सॉन्ग अते एक हिंदी सॉन्ग पेश करेगा, आस रखते हाँ कि तुसी इसनूं लाइक करोगे।